समुंद शाह सुल्तान गिरहा से ती माल तन कीड़ी तुलना हो बनी जे तिस मनो न मिसरे।